शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दयो महला दूजा।

ते राय सोचन लग्या के कितना समा पाके कालू जी दे घर माता त्रिपता दे घर आ लाल पैदा होया सी लेकिन आज लगदा है कि सब ने इसनु डस लिया। आ वही जाके कोई खबर करो

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन। आख्या मैं ता जी आपनू राय जी याद करदे हैं, उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां। मेहता जी आए, राय जी ने आउंदिया ही पुछया, मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया? मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुक के तीला क्यों ना हो गया, क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापद गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवें ना आखो, तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज। मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी, जापद वह भी इथे आवेगी, क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है, 12 साल हो गए हैं गुरु नानक नू घरों गया, ते घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके, क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे, जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे, ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे करो, ते कोई सुख स्नेहा ना हो।

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई है, मां ने रो रो के अखां गवा दितियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई, अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नू मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां, लेकिन दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलियां तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहिंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मूंह ते चपेड़ मार, तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा, ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है, गुरु नानक गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है, कदे इस पासे मुंह करके बैठा, सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी, राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता, चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी, ते सारे हुण एक मन होके जप रहे

पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेडे गुण परमात्मा चाहुंदा है ओह तां तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते ओह चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए, पर किवें?

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नू, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया, लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनूं छड़ के नहीं जा सकदा। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज, आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया, ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के, गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हृदय नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं

तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा, अचरज

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्हीं कया मैं कुले वडाई, किन्हीं कया बाह बो भाई। कोई कहे मैं धने पसारा, मोए दीन हर हर आधारा। किन्हीं घूंघर नृत्य कराई, किन्हीं वर्त नेम माला पाई।

पंडित सा सत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नामदा दे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है जे परमात्मा रूपी नामदा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिरल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली ना।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके सब दा तन मन

रखियो ग्रे पीतर उठ उहाँ को दौरियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सो घरख नहीं जाने हो।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे, बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए। जिथे मोह बनिया हो, प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख दी गल जिहड़ी रोटी दी लगदी, एक होर भुख दी गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी दी भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना, सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, ये गल वखरी है। सत्संगत इस दुख च साहबा ने कहा ना, गुरपुरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया है कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा, ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हिड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा। मच्छी नूं जीवा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई, बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल, उन्हूं निकल लेंदी है, कुंडी निकल लेंदी है, फस जांदी है। परेंग नूं पंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामै तांकी केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने, इह कन्नां तों भी कमला, इह नासां तों भी कमला, अखां तों भी कमला, जीवा तों भी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों भी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना, उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तो भी बच जाता है, क्योंकि दोष तो ही, दोख तो ही दुख पैदा होता है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा, तो दुख भी नहीं रहेगा। गुरपुरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दिती, मैं की करा, मैनू की करना चाहिए। साहिबा ने साडे वल संकेत किया कि हुण तू अपना फर्ज पछाण, गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तो बचाया, तैनू की करना चाहिए। वह संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवा तेरे नाल, चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवा।
तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, अज तेथों विछड़ गए, मुड़के दोष आ गए, मुड़के दुख आ जाणगे। तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो। साध संगत से प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, ए भी तेरी रहमत। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है, ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया, प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप। हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते, हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु, निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां, ओले ना होवां, भुल ना जावां तुहानू। नानक मांगे दान प्यारे, मैं तो यही दान मंगदा, निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी, सिखा ने वेखिया, कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है, कोई खुफिया जापदा है, जासूस लगदा है, जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है, मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है। बुकल कैसी मारी सू, पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई, किवें बुकल मारी सू, जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने, और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है। महाराज कहन लगे फड़ लो, सिखा ने जाके घेर लिया, फड़ लिया दा। रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर कीता गया। साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू, मूह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी, मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा, मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने, मैं भी जानदा जो कुछ तुहाडे बारे सुने है, मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ, कौन है तू। कहन लगा जी पठान पुत्र, किवें आया सा इधर कि महाराज एवं बिपता दा मारिया आ गया। सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ, इहदी पुछो इहदी बुकल विच की। अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ। हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे, जो कुछ मैं अंदरों हां, जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे, क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है। जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा, बल्कि वह तो इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं। जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है, बल्कि इत्थों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे। छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नू दसना चाहुंदा है, लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है, कोई किसे नू नहीं दसदा। सजना तो गहरे सजना नू, इथों तक पति पत्नी एक दूजे नू अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे। कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने, परदे वाली गल ही कोई नहीं। तरला मारन लगा, कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे। साहिब मुस्कुरा पए, साहिब जानदे ने दा परदा की है, पर ये तो आप परदे ढकण वाले ने, इहदा इह परदा ला के उहदा दोई जानी परदा कज्जण ते आए ने। कहिंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस, इहदी चादर ला दे। रोण लग पिया, सिखा ने एक नहीं सुनी, उन्होंने चादर ला दिती। ओदी बगल च निक्का जिहा मरियल जिहा कुत्ता पाया है, ओदी संगी ते उन्हें हाथ दिता है, कुत्ते दियां अखां बाहर ने, जवान बाहर नू आई मर रहा है, छड़ दिता कुत्ता थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी, सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों की गल है, बोलदा क्यों नहीं। कहन लगा महाराज कई दिनों का भुखा सा, देसों प्रदेश आ गया सा किरत करन वास्ते, इत्थे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है वे किसे गरीब नू रोटी कित्थों मिलनी, इत्थे तां लुटेरा खा सकदा डाकू खा सकदा, गरीब दी कोई जा नहीं, या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने खा सकदे ने जिन्हां ने उस अफरा तफरी का कोई असर नहीं लिया, जिहड़े उस अफरा तफरी नू मिटाउण वास्ते तुले होए ने। तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने पातशाह, मैं गरीब उन्हां नू फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी, ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उंज नेड़े नहीं लगण देंदे। मैनू मुसलमान पठान नू रोटी खाधियां कई चिर हो गया है, मंगणा मेरी शान दे खिलाफ है,
कैसी प्यारी गल है। जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहती है लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तरकारा तो मिल सकदियां ने मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छकदा दरकार नाल नहीं खान नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तो नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई तरह का भुखा दा मारिया अज मैं ये फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, ते मरियल जा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता सा कितने नुकरे बह के इसे चब लव, इसे भुन के जिम्मे भी हो खा लव, अपने पेट की अग बुझा लव। साहब कह लगे लंगर छकाओ सोने बस्त्र पुआ। कह लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना दोखी हो सकना, लंगर छका रहे हो तुहाडी बड़ी कृपा है क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा। साहब कह लगे तू इत्थे ही रहेगा। कह लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए, कह लगे नहीं इत्थे भाई कन्हैया वर्गे बेअंत ने जिहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां च रजीने मिलदे सन, साहिबां ने रुपया रोज का ला दिता। कह लगे इहनू गुजरान मात्र रुपया रोज का दिओ। कह लगा साहब जी किस गल का, तुसीं इह रुपया रोज मैनू किस गल का बख्श दिओ। साहिब कहण लगे भुखां दा मारिया गरीबी दा मारिया देसों परदेश आया कमाउण वास्ते तेरे बाल बच्चियां वास्ते तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहिब कहण लगे जो तेरा जी करदा है इत्थों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया गुरु कीआं रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया पैसे भी हो गए हुण तां निकल जा इत्थों, तेरी जात बरादरी वालियां ने तेरे बंदियां ने वेख लिया तैनूं काफर कहणगे तैनूं दोषी करार देणगे। उह कहिंदा नहीं दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है इन्ना पर उपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया ते मैं इहनूं छड के होर किहदे कोल चला जावां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणां तों, साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख दा की फर्ज बनदा, वह सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तों सरदारियां पाईयां ने, भुखां मिटियां ने, मान मिलिया है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नूं शांति प्राप्त होई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते इह होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान भरम निकल जान बंदे नूं चैन आ जांदा है। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

सौ रावे आ जिन्हां ने पति दा प्यार प्राप्त कीता, जिन्हां ने मालक दी खुशी प्राप्त कीती। से अंबी छावड़ी है जीओ, ओ अंबा दी छावे बैठिया, खुशियां मान दियां ने। पति प्यार दे आनंद विच मगन ने।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया, बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातों रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़ियां गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया। कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई।
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी। अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ होते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया। जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया। मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो। खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह जी हजूरी विच सदके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वो प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदे नाल वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो ग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा इह हुक्म है सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते इह हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया नहीं। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्ही मैं दे। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है, ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंदीए साहब की बख्शिश है भी जो गल करोगे थोड़ी रसना ती आप ही बोल बोल तुम सुनाई जाओ भी ए कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ये उत्तम है, ये प्रमाणिक है, ये ना प्रमाणिक है। थोड़ी रसना ते बैठ के तुम समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जो थोड़ी रसना वरत के आप ही तुम कही जाए, जानी बोलने वेले तुम ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है। ते जिन्हें भी प्रभु नू खोजना है ते इहदे विच समाया है, ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है। आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। ते जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझां वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नू दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुन दा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदरा करन बख्शिया है, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा। जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आयु ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।